परंतु अचरा मचा वे पर सडका कुकुवन कुकिरी पंबांगोनल मस्जिद तोरो मरसा।